ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के सेंटेनरी सेलिब्रेशन में लिए गए जो इनिशिएटिव्स थे, उसमें से एक इनिशिएटिव 17 अगस्त 2025 को श्री सत्य साई दिव्य ज्योति, इस पवित्र आध्यात्मिक केंद्र से, यह विश्व की वह आध्यात्मिक नगरी है जहां से पूरे विश्व को प्रकाश मिलता है, इस जगह से, इस पवित्र जगह से 5 ज्योति जो हैं उनको भारत के अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित कर ले जाया गया। इसी प्रांगण में, इसी हॉल में इन 5 ज्योति को यहां से जम्मू, जयपुर, कन्याकुमारी, कोलकाता और कुंभी जो कि मणिपुर में स्थित है, इन जगहों पर इन ज्योति को ले जाया गया। 31 अगस्त 2025 का वह दिन जब इन ज्योति ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी इन सब स्थानों से, पुनः इस पवित्र ज्योति, इस डिवाइन अबॉड ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा की तरफ आने के लिए। इस यात्रा में प्रत्येक ज्योति ने तकरीबन 29 स्टेट्स को से निकलकर ये यात्रा आई है और सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के तकरीबन 1500 समितियों से ये गुजर कर आई है। यह सत्य साई सेवा संगठन और साई भक्तों के लिए केवल एक ज्योति नहीं थी, यह उनके घरों में भगवान का आगमन था। सभी स्थानों पर इस ज्योति को के साथ हमने एक और इनिशिएटिव जो था श्री सत्य साई रन एंड राइड फॉर द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, उसको इसके साथ कनेक्ट करा था। हर स्टेट में कम से कम 2 सिटीज में हमने इस रन एंड राइड को वहां पर इनका आयोजन करा। यह ज्योति ने इस पवित्र ज्योति तक आने में टोटल 32,000 किलोमीटर की यात्रा करी है। इन 11 महीने 22 दिन इस ज्योति ने भारत के हर कॉर्नर में, भारत के हर कोने में, हर साई भक्त के दिल में अपना प्रकाश जलाया है। यह केवल वहां पर यह ज्योति ने प्रकाश ही नहीं जलाया, परंतु हमने हर स्टेट में इस ज्योति से और एक ज्योति प्रज्वलित करी जो आज एक बहुत बड़े पैमाने पर हर समिति में इस ज्योति को घर घर में ले जाया जा रहा है और हर घर में ये माना जा रहा है कि भगवान उस घर में आ रहे हैं। एक छोटा सा 17 अगस्त 2025 को निकला एक छोटा सा प्रकल्प जो है वो आज एक बहुत बड़े विशाल मिशन के रूप में सत्य साई सेवा संगठन में कार्य कर रहा है। स्वामी, हम जानते हैं कि करने वाले केवल आप ही हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इस सेवा के अवसर के लिए स्वामी, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। जय साई राम।

से भी कम के बेतना भव समुद्र सुकदनाव के करामना परम शांति परम निधान दिव्य राम